0: हेलो।
1: हेलो,
0: यस
1: माशाल्लाह।
0: इति दिल लोग लाई कोई चीज ने किने करो।
1: लड़ी चल रहा है दोनों ये। कौन है
0: तुम्हारे
1: को शेयर करो माय डार्लिंग।
0: मैंने ये बोल ना।
1: शेयर।
0: लिल स्क्वायर।
1: शेयर करो माय।
0: दोनी लोग पैसे उन्हें तो अलबा।
1: ये शेयर।
0: चेक कब नहीं हो?
1: माय डार्लिंग।
0: My love,
1: my darling.
0: Okay. The network you know, fetch your bear bear. Young you come. Do you keep ping? No. Do you know ping to turn?
2: No one play your request better than we do. No one. Ballroom.